खड़ग केत न सरण तिहारी आपा दल उबारी सर्व ठार मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किड बिक सकल दे को हरता दुष्ट दुखिन को शय करता श्री अस्त जो पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन पा छत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ेल सुने गुंग जो यास रसना पावई सुने मूड चितलाय चित्रता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नरके रह ओ जो या की एक बार चौपई को कह चौपई समस्त्र सस्मणी जाय अर्ध सहस फोन तीन कही जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चित्र पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री पू संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त सब मस्त अफजू दोहरा दास जानकर दास का पार की जय कृपा पार आपा दरख मोहे मन क्रम वचन विचार चौपाई मैं ना गणेश प्रथम बनाऊं किसन बिसन कब हूं न

हमारो मालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार हो बाएंगे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चन चन सत्र हमारे मरिया देख देख जग मैं दो चल राख माप मुझे और ना दल तुम करो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मयान द्वार तोहे अपने जान करो प्रत पारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दास जान दहाथ बारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम त्रो भगवत को ध्याना बहर करो कविता विध नाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चू कोय कवले सुधारो कवि बाच बे दोहरा जो निज प्रभु मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभु को त्याय हैं अंत

जल ही बिखर समाहे दोहरा। जब आय प्रभु को पहो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेपते सबू कहत सुनाए। कवि बाच दोहरा ठंड पयो मैं जोर कर। बचन कहा सिर न्याय

स्मृत शास्त्र वेद सब है वह भेद कहे हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बकाने। दोहरा

सतगुर दया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मन माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु ग्रंथ साहिब उददा बंदा कर अनुराग, श्री गुर शब्द कमाए जेना जीते पंच बेकार, तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सचोए, वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सो।

0: प्रतिबाण शीतल पुरख धृष्ट सुजान सच हुकमत महरा तख्त निवासी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सच हुकमत महरा तख्त निवासी

तो हम नव पापन के बहुपुंज कर पाएंगे। साध समूह परेशान फिरा जग सत्तर सब अवलोक चप पाएंगे। मानव इंद्र विजेंद्र राध पो जौन तर लोको राज करांगे। कोट स्नान गजात गजान अनेक स्वम बरसात बरांगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पत अंत फसे जम पास परांगे। जे नाव श्री पत की प्रस है पागु ते नार फिर न देह तरांगे। कहा पयो जो जो लोचन मूंद काय बैठ रहे भक्त अन्न गायो। नाथ पिरयो लिए सास मंदर लोग परलोक गवायो। बास कियो बिखियन सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। साच कहूं सुन ले हो सबाई जिन प्रेम की उतनी ही प्रपायो। काहू ले पाहन पुत्रयो सिरु काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नवायो। को बतान कपूत है पासो को मृतान कपूजन तायो। पूर करे और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो। को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। पूर करे और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दैर छाग पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबाई तुम काबो। आप खाद मोह बचावो हो सुखी बसा मोर परिवार। आओ सेवक सिख सबाई करतारा मोर अच्छाओ। निज कर दाय करिया ईसा बैरन को आसंगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा। तुम छाड़ कोई अवन त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चौन चत्र हमारी मारिया है। आप हार दे मुझे बरियाई मरण काल का त्रास मरिया। ओ जोसदा हमारी पच्छाओ श्री अस तो जिजु कर हो रच्छा। राख ले हो मुहराखन हारी साहु सन सहाय प्यारी। दीन बंदुष्टन के हमताओ तम हो परी चातर दास कंताओ। काल पाए ब्रह्मा भक्तराओ काल पाए शिव जू अवतराओ। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा। जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ। जमन काल सब लोक सवारा ओ नमस्कार हता हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो। आदि अंत एक है अवतार सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेव करो को साब गुण सुख दियो सत्रन को पालनो बात कियो। कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना है कड़ कड़ की पड़ पड़ की जाना है। जबद कर करा करता राव प्रजा तर तब देह पाराव। जब या कर कर तो कब हो तुम मिलते तर सब हूँ।

आद लीला नाद सांब ताका मुड़ चरद पहदाऊं जाको पहिवन पावद बेदाऊं ताको कर पाहन अनमान तो माहा मुड़ कच पेद न जान तो माहा देव को कहत सदा सेवो निरंकार का चीनत न है पेवो

कहूँ भूला जाहूँ बैठा कहूँ सिमट पाए शंकर काठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव आद जुगाद स्वरूप सजंभव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो। दुष्ट जिते ओटवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे असो जो तब सरणी परे तिनके दुह दुख तुह मरे। पुरख जन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होता है सब काला ओ दुष्ट अरिष्ट अरंत काला। कृपा दृष्ट तर जास निहर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुर्चा छुप सके न कोई एक बार जंत में संभारा काल पास तीता हूँ बारा। जिन नर नाम तिहारु कहाउ दर्द दुर्ध दुख तेरा हाउ खड़ग केत में शरण तिहारी आप खादे ले हो बारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुर्ध दुख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता। श्री अस तो जो जा पाए दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे सोई दुख नत सब आपद कोई अड़ल। सुना गंग जो जाहि सुरस न पावई सुना मूड चित लाए चतरता आवई दुख दर्द भाव निकट डांग तिन नर के रहै हो जो जा की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जाए अर्ध सहस पण तीन कही जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रबाराओ तीर तद्रव ग्रंथ सुधाराओ सवैया।

0: सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहारो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बाधा हिया राग ऋतु परवार प्रिय शब्द गा बड़े शब्द उत्ता गावो हरि के राव मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओहो करे तेरा कार्य सब सुबारना सब नांगला समरत स्वामी सो क्यों मन हो सारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी ना मन मसावे नाम जिन कै मन मसिया वाजे शब्द कनेरी कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसे आओ जिन इच्छा सब उपजाई आओ सदा कुर्बान कीता गुरु बिट्टा हो जिस दियां एह वड्याईया।
1: कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सभागे घर सभागे शब्द वाजे कलाजत कर तारिया पंच दोत तदवस किते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुरजन कोसे नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हो तित करिया नहद वाजे साचे लिवै बनदे निमाणी दे निमाणी लिवै बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समर्थ कोए नाही कृपा कर बनवारिया एस न होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बाजो क्या करे विचारिया

रह कर्म कमाए। सहसा जीव मलीन है कत संजम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो हर सिमरो चित लाए।

कमाणी कूड़ की सोय पहुंचे नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिन्नी खटिया

सिख कोई जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हृदय ध्याए अंतर आत्मा संभाले आप छंड सदा रह परण गुरबन अव न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन मुख।

वहो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पानी कह नानक सदा गावो हो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्चियां खो खाणी हर हर नित करहें रसना कहया कछु न जानी।

मनहु क्यों मिसारिया ए उड़दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनु केहो पो न सके जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानके उड़दाता सो क्यों मनहु मिसारिया।

पाए। हरदस पाए पल्ले पिए हरदस बौड़न तृष्णा लागे आए यो हरदस करमी पाए सतगुर मिले जसाए कह नानक होर अनरस विसर जाहर वसै मन आए।

पढ़िए पिनप सजे पिन रचना देख गुरु सजिए कर संड ठोचा दाता करता है आप तुस्ते कर पसा तू जन सबसे दिल से जिंद।

0: विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद ठेस विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंग प्रजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लग है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वजोग विस्माद मुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखा हाजरा हजूर वेख वडान रहे विस्माद नानक बुझण पूरा पहाग महला पहला
1: कुदरत सै कुदरत सुनिए कुदरत भाव संसार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत

पौड़ी नजर करे जे अपने थाने त्रि सतगुर पाया जे बहुते जन्म परमिया था सतगुर सब सुनाया सतगुर जे विड़दाता को नहीं सब सुले लोग सबाया सतगुर मेरे सच पाया दिन विचों आप गवाया दिन सचो सच बुझाया।

थोड़े सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तुस मिले सच तत् नी सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिन के हृदय सच वसाया

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ का

0: जुगो जुग टल सतगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है जिन्होंने अपार मेहर करके अमृत वेले पावन पुत्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाए बख्शे गरीब नवाज सब दा पढ़िया सुनिया लिखे लोन गुरु चरण बन आवे आओ सरन करी लड़ीवार गुरु शब्द विचार गयानी दर्शन से जी और पास वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੁਗਲ ਵਿਗਾੜਾ ਦਿਨ ਸੋ ਰਾਤ

सच सहज सुख पावह मीता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजिया वादाहिया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावने आईया, शब्दो ता गावो हरि केरा। मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा, कार्य सब सुवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर।

महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगाइया बुरियाया वाचा धर्म दूर करमी आपो अपनी

पौड़ी वडियों दा अपार तेरा मर्तबा रंग प्रंग अनेक न जापन करते बा जी अंदर जियो सब के जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर पला तेरा कर आनंद उधाय